0: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Stop scrolling and get the grades you actually want. Revision guides make the whole stuff easy to understand with clear notes, practice questions and even a little bit of banter. Your local bookshop today. Don't just arise. Arise right with the right materials. Thank you for listening to Inspire FM. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
1: It's Qurbani time again. Who will you trust to perform this noble obligation? Last year, UKIM delivered fresh, healthy and nutritious meat to over 400,000 orphans, widows and the needy around the world. With your Qurbani, we made their Eid al-Adha a big day. For as little as £35, you can make this year's Eid al-Adha even bigger. Call now on 02073872157 or visit ukim.org and book your Qurbani today.
2: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 7.

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: Be inspired, Inspire FM.
2: I have whiskey.

इंस्पायर एफएम की वेबसाइट पर मिलेगी आपको बेशुमार मालूमात, लुटन में होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम, लुटन कम्युनिटी की खबरें और बहुत कुछ। विजिट कीजिए www.inspirefm.org।